0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, ईश्वर ने मानव को अपने अनुरूप बनाया और सभी तरह की अच्छाइयों और गुणों से भर दिया है। लेकिन दुनिया में हो रही रोज दिन की घटनाएं, बुराइयां और कार्य को देखते हुए हमारे जहन में संदेह भरा यह सवाल उठता है कि यदि ईश्वर ने हम मानव को अच्छाइयों और गुणों से विभूषित किया है तो दुनिया में इतनी सारी बुराइयां, हिंसा, युद्ध, धोखाधड़ी क्यों? मानव के जीवन में ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जहाँ हम स्वयं अपने परिवार के लोगों को भी जान से मार डालने को उतारू हो जाते हैं। दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि क्या मानव के लिए अच्छा होना इतना कठिन है? हम अच्छा बनने के बजाय क्यों बुरा बन जाते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं? हम क्यों दूसरों के जीवन की चीजों को हथियाना चाहते और उनके द्वारा अपने लिए फायदा उठाने की चाह रखते हैं? श्रोताओं, वर्ष के 27वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार का संदर्भ हमारे लिए पूरे मानव समाज में व्याप्त बुराइयों का हाल व्यक्त करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि हम में बुराई की उत्पत्ति कहाँ से होती है। वे कौन सी बातें हैं जो हमें अच्छा बनने से रोकती हैं? क्या किसी के बारे में अच्छा सोचना और अच्छा करना हमारे लिए इतना कठिन है?
1: यीशु ने महायाजक और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे जीवन को परिशुद्ध करे, जिससे हम अपने में व्याप्त बुरी बातों और नकारात्मक चीजों से मुक्त हो सकें, जो हमें दूसरों के लिए अच्छा बनने के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। श्रोताओं, नबी इसाइस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ दाखबारी की चर्चा करता है, जिसे स्वामी ने तैयार किया कि उसे अच्छी फसल मिले, लेकिन उस दाखबारी से उसके लिए खट्टे अंगूर की उपज मिलती है। दाखबारी का मालिक इस बात से दुखित और नाराज अपनी दाखबारी को उजाड़ने की सोचता है। वह उसे उजाड़ झाड़ झंखड़ की स्थिति में रहने देने की चाह रखता है, क्योंकि दाखबारी पर किया गया मेहनत उसके हाथों में निराशा लाती है। श्रोताओं, दाखबारी का यहाँ तात्पर्य मानव जीवन से है। दुनिया में हमारा यह भौतिक जीवन ईश्वर की दाखबारी की भांति है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सजाया और संवारा है। उन्होंने इस दुनिया में हमारे लिए मेहनत की है और प्रतिदिन मेहनत करते हैं। अतः हमारे जीवन रूपी दाखबारी से वे अच्छी उपज की चाह रखते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ नहीं बल्कि सारे मानव समाज के लिए ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति का एक स्थल बनता हो, जहां हमारे सुंदर, अच्छे और भले कार्यों को देखकर सृष्टिकर्ता ईश्वर की महिमा और स्तुति की जाती हो। लेकिन बहुधा हम अपने जीवन के द्वारा अच्छे और मीठे फल उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में अच्छा फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सबों में वे क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिनके द्वारा हम अच्छा फल उत्पन्न करने, दुनिया को प्रेम, शांति और न्याय का एक स्थल बनने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर उसी के लिए हमें चुना और अच्छा बनाया है। श्रोताओं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन के इस स्थिति को देखने और समझने का आह्वान करता है। संत पौलुस हमें किसी बात की चिंता नहीं करने को कहते हैं। वे हमें अपनी जरूरतों में प्रार्थना करने और ईश्वर का धन्यवाद अदा करने को कहते हैं। ऐसा करने के द्वारा ईश्वर की शांति हमारे हृदयों और विचारों को यीशु में सुरक्षित रखती है। प्रेरित हमें जो सच है, आदरणीय है, न्यायसंगत, निर्दोष, अच्छा, मनोहर, उत्तम और प्रशंसनीय है, उन बातों पर चिंतन करते हुए उनके अनुरूप अपने कार्यों को पूरा करने को कहते हैं, क्योंकि ख्रिस्त ने हमें इन्हीं बातों की शिक्षा दी है। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने ठीक इन बातों के विपरीत हिंसा, षड्यंत्र, बुराई और हत्या की बातें सुनी। आज दुनिया की स्थिति यही है। वहीं यदि हम अपने जीवन की आत्मपरख करें तो हम इस बात को पाते हैं कि हम सबों को अच्छी और नेकी करने की शिक्षा दी गई है, यद्यपि हम उनके अनुरूप आचरण करने में अयोग्य होते हैं। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने सुना कि स्वामी ने हमारे लिए सारी चीजों को तैयार करके दिया है, जिससे हम उनके द्वारा बनाई और दी गई चीजों की देखरेख करें, उन्हें फलहित करें, उनका लाभ उठाएं और ईश्वर को उनके हिस्से का उचित रसद अदा करें। लेकिन अपने स्वार्थ और लोभ के कारण, जैसे कि उन असामियों ने किया, हम बहुधा ईश्वर से मिले सारी चीजों का उपयोग अपने लिए करते और ईश्वर को अपने से दरकिनार कर देते हैं। वे चीजें जिन्हें हमें उन्हें देने की जरूरत है, विशेषकर हमारे हृदय और हमारे भले कार्य, हम अपने में आनाकानी करते हैं। यह ईश्वर के प्रति हमारे व्यवहार को प्रकट करता है। जहां मानव अपने में लोभ, लालच और स्वार्थ के भाव से ग्रसित है, लोभ और स्वार्थ के कारण ही हम आज दुनिया में बुराइयों को एक के बाद एक पनपता हुआ पाते हैं। अपने लोभ और स्वार्थ में हम दाखबारी के फल तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन असामियों की भांति पूरी दाखबारी का स्वामित्व ही हासिल करना चाहते हैं। इस भांति हम यह भी भूल जाते कि हम दाखबारी के स्वामी नहीं, बल्कि उसकी देखरेख करने वाले सेवक मात्र हैं। श्रोताओं, स्वामी हमें दाखबारी के फलों को दूसरों के संग भी साझा करने को कहते हैं, जिसे वे कई लोगों के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं। आइए हम स्वामी से निवेदन करें कि वे हमें दुनिया में भेजे जाने के मर्म को समझने में मदद करें, जिससे हम उदारता में अपने जीवन की चीजों को दूसरों के संग बांट सकें।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, ईश्वर ने मानव को अपने अनुरूप बनाया और सभी तरह की अच्छाइयों और गुणों से भर दिया है। लेकिन दुनिया में हो रही रोज दिन की घटनाएं, बुराइयां और कार्य को देखते हुए हमारे जहन में संदेह भरा यह सवाल उठता है कि यदि ईश्वर ने हम मानव को अच्छाइयों और गुणों से विभूषित किया है तो दुनिया में इतनी सारी बुराइयां, हिंसा, युद्ध, धोखाधड़ी क्यों? मानव के जीवन में ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जहाँ हम स्वयं अपने परिवार के लोगों को भी जान से मार डालने को उतारू हो जाते हैं। दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि क्या मानव के लिए अच्छा होना इतना कठिन है? हम अच्छा बनने के बजाय क्यों बुरा बन जाते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं? हम क्यों दूसरों के जीवन की चीजों को हथियाना चाहते और उनके द्वारा अपने लिए फायदा उठाने की चाह रखते हैं? श्रोताओं, वर्ष के 27वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार का संदर्भ हमारे लिए पूरे मानव समाज में व्याप्त बुराइयों का हाल व्यक्त करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि हम में बुराई की उत्पत्ति कहाँ से होती है। वे कौन सी बातें हैं जो हमें अच्छा बनने से रोकती हैं? क्या किसी के बारे में अच्छा सोचना और अच्छा करना हमारे लिए इतना कठिन है?
1: यीशु ने महायाजक और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे जीवन को परिशुद्ध करे, जिससे हम अपने में व्याप्त बुरी बातों और नकारात्मक चीजों से मुक्त हो सकें, जो हमें दूसरों के लिए अच्छा बनने के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। श्रोताओं, नबी इसाइस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ दाखबारी की चर्चा करता है, जिसे स्वामी ने तैयार किया कि उसे अच्छी फसल मिले, लेकिन उस दाखबारी से उसके लिए खट्टे अंगूर की उपज मिलती है। दाखबारी का मालिक इस बात से दुखित और नाराज अपनी दाखबारी को उजाड़ने की सोचता है। वह उसे उजाड़ झाड़ झंखड़ की स्थिति में रहने देने की चाह रखता है, क्योंकि दाखबारी पर किया गया मेहनत उसके हाथों में निराशा लाती है। श्रोताओं, दाखबारी का यहाँ तात्पर्य मानव जीवन से है। दुनिया में हमारा यह भौतिक जीवन ईश्वर की दाखबारी की भांति है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सजाया और संवारा है। उन्होंने इस दुनिया में हमारे लिए मेहनत की है और प्रतिदिन मेहनत करते हैं। अतः हमारे जीवन रूपी दाखबारी से वे अच्छी उपज की चाह रखते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ नहीं बल्कि सारे मानव समाज के लिए ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति का एक स्थल बनता हो, जहां हमारे सुंदर, अच्छे और भले कार्यों को देखकर सृष्टिकर्ता ईश्वर की महिमा और स्तुति की जाती हो। लेकिन बहुधा हम अपने जीवन के द्वारा अच्छे और मीठे फल उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में अच्छा फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सबों में वे क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिनके द्वारा हम अच्छा फल उत्पन्न करने, दुनिया को प्रेम, शांति और न्याय का एक स्थल बनने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर उसी के लिए हमें चुना और अच्छा बनाया है। श्रोताओं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन के इस स्थिति को देखने और समझने का आह्वान करता है। संत पौलुस हमें किसी बात की चिंता नहीं करने को कहते हैं। वे हमें अपनी जरूरतों में प्रार्थना करने और ईश्वर का धन्यवाद अदा करने को कहते हैं। ऐसा करने के द्वारा ईश्वर की शांति हमारे हृदयों और विचारों को यीशु में सुरक्षित रखती है। प्रेरित हमें जो सच है, आदरणीय है, न्यायसंगत, निर्दोष, अच्छा, मनोहर, उत्तम और प्रशंसनीय है, उन बातों पर चिंतन करते हुए उनके अनुरूप अपने कार्यों को पूरा करने को कहते हैं, क्योंकि ख्रिस्त ने हमें इन्हीं बातों की शिक्षा दी है। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने ठीक इन बातों के विपरीत हिंसा, षड्यंत्र, बुराई और हत्या की बातें सुनी। आज दुनिया की स्थिति यही है। वहीं यदि हम अपने जीवन की आत्मपरख करें तो हम इस बात को पाते हैं कि हम सबों को अच्छी और नेकी करने की शिक्षा दी गई है, यद्यपि हम उनके अनुरूप आचरण करने में अयोग्य होते हैं। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने सुना कि स्वामी ने हमारे लिए सारी चीजों को तैयार करके दिया है, जिससे हम उनके द्वारा बनाई और दी गई चीजों की देखरेख करें, उन्हें फलहित करें, उनका लाभ उठाएं और ईश्वर को उनके हिस्से का उचित रसद अदा करें। लेकिन अपने स्वार्थ और लोभ के कारण, जैसे कि उन असामियों ने किया, हम बहुधा ईश्वर से मिले सारी चीजों का उपयोग अपने लिए करते और ईश्वर को अपने से दरकिनार कर देते हैं। वे चीजें जिन्हें हमें उन्हें देने की जरूरत है, विशेषकर हमारे हृदय और हमारे भले कार्य, हम अपने में आनाकानी करते हैं। यह ईश्वर के प्रति हमारे व्यवहार को प्रकट करता है। जहां मानव अपने में लोभ, लालच और स्वार्थ के भाव से ग्रसित है, लोभ और स्वार्थ के कारण ही हम आज दुनिया में बुराइयों को एक के बाद एक पनपता हुआ पाते हैं। अपने लोभ और स्वार्थ में हम दाखबारी के फल तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन असामियों की भांति पूरी दाखबारी का स्वामित्व ही हासिल करना चाहते हैं। इस भांति हम यह भी भूल जाते कि हम दाखबारी के स्वामी नहीं, बल्कि उसकी देखरेख करने वाले सेवक मात्र हैं। श्रोताओं, स्वामी हमें दाखबारी के फलों को दूसरों के संग भी साझा करने को कहते हैं, जिसे वे कई लोगों के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं। आइए हम स्वामी से निवेदन करें कि वे हमें दुनिया में भेजे जाने के मर्म को समझने में मदद करें, जिससे हम उदारता में अपने जीवन की चीजों को दूसरों के संग बांट सकें।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु येसु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
3: नमस्कार श्रोता।

साइबेरिया क्षेत्र में बैकाल झील के पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह साइबेरियाई एशिया का दिल एवं विविधताओं की भूमि है। 40 डिग्री की ठंडक के साथ साथ यहाँ के लोगों का स्नेह एवं मेहमान नवाजी भी खास है। जबकि बौद्ध मठ एवं शामनिक पूजा स्थल ख्रिस्ते गिरजाघर से दूर नहीं है। लोगों और धर्मों के इस मेल में डोमिनिकन धर्म बहनों का समुदाय यीशु ख्रिस्त का दृश्यमान चिन्ह बन गया है और साथ ही अलग अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत में एक सक्रिय हिस्सा भी। तो लीजिए प्रस्तुत है बुरियातिया में डोमिनिकन धर्म बहनों की प्रेरिताय की एक झलक, जो दिखाती है कि धर्म बहनें किस तरह कलीसिया की प्रेरिताय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संत डोमिनिक की धर्म बहनों ने सन 2000 में बुरियातिया में अपनी प्रेरिताय की शुरुआत की। सिस्टर बर्नादेत ओपी याद करते हुए कहती हैं, हमारे मिशन की शुरुआत में हम स्थानीय लोगों के लिए इतने अजीब थे कि लोग दुकानों से बाहर निकलकर सिर्फ सड़क पर चलती धर्म बहनों को देखने आते थे। बुरियातिया, जो आकार में जर्मनी के बराबर है, यहाँ 100 से अधिक जातीय समूह हैं, जिनमें सयोट्स और इवेंक्स जैसे अनोखे छोटे आदिवासी समूह भी शामिल हैं। नए मिशन के पहले कदम आसान नहीं थे। पोलैंड से आई धर्म बहनों को साइबेरिया के खराब मौसम और इस बात की आदत डालनी पड़ी कि यहाँ सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि घर में और हर जगह ठंड हो सकती है। सिस्टर बेनादित कहती हैं, मुझे साइबेरिया में अपनी पहली शरद ऋतु बहुत अच्छी तरह याद है। पूरे जनवरी माह में पाला पड़ा था और तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। शहर में गर्म करने वाली मशीन खराब हो गई थी। अपार्टमेंट में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस और +4 डिग्री सेल्सियस के बीच था। हमें अपनी जैकेट पहनकर ही घूमना पड़ता था। वहाँ के कार्तिक समुदाय के बारे बतलाते हुए धर्म बहन कहती हैं, बुरियातिया की राजधानी उलन उडे में कार्तिक समुदाय का भाग्य पहले के USSR के कई दूसरे कार्तिकों जैसा ही था। 1907 में स्थापित पल्ली गिरजाघर सोवियत दमन के दौरान तबाह हो गई थी। कई सालों तक विश्वासियों को खुले तौर पर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिला था। लंबे समय बाद 2003 में गणराज्य के अधिकारियों ने कैथोलिक गिरजाघर बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा दिया, जहां सिर्फ 2 साल बाद गिरजाघर बनकर तैयार हो गया। तब से गिरजाघर के ऊपर बना क्रूस इस जगह पर ख्रिस्ती विश्वासियों की पुनः उपस्थिति का चिन्ह बन गया है। प्राचीन बौद्ध और शामानिक जड़ों वाले इस विविध जातियों के इलाके में ख्रिस्त की घोषणा शुरू से ही बातचीत जैसी रही है। शुरुआती जिज्ञासा ने आपस के एक जैसे मूल्यों की खोज को रास्ता दिया। अपने पड़ोसी से प्रेम करने के ख्रिस्ती नियम बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के अनुरूप लगे। पारंपरिक बुरियाती संस्कृति परिवार और बुजुर्गों के साथ बहुत सम्मान से पेश आती है। शांतिपूर्ण बातचीत के माहौल में अलग अलग मान्यताएं एक दूसरे को बेहतर बनाती हैं और एक ही लक्ष्य मानव गरिमा का ख्याल रखने की ओर बढ़ती हैं। समय के साथ कुछ बुरियात परंपराएं कार्तिक समुदायों के जीवन में मजबूती से जुड़ गई हैं। इनमें से एक है खदाक। यह गहरा सम्मान दिखाने वाला एक खास अभिवादन है, जिसमें रेशम का स्कर्फ और घोड़ी का दूध झुककर दिया जाता है। उलन उडे के कार्तिक पल्ली और डोमिनिकन धर्म बहनों के मठवासी समुदाय में मेहमानों का स्वागत इसी तरीके से किया जाता है। खदाक का रंग बहुत महत्वपूर्ण है और यह अतिथि के प्रति सम्मान का चिन्ह है। नीला रंग आसमान और पवित्रता का प्रतीक है, लाल रंग आत्मा की उष्मा का संकेत है और सफेद रंग अच्छे कामों और उदारता का प्रतीक है। मिशन के शुरू से ही धर्म बहनों की प्रेरिताएं सुसमाचार के मूल्यों के बारे में बातचीत का निमंत्रण बन गई है। जरूरतमंदों की मदद करने से लोग हैरान हो जाते थे, खासकर वे जो धर्म को नहीं मानते थे। वे पूछते थे, आप उन लोगों की मदद क्यों करती हैं जिन्हें आप जानती ही नहीं। धर्म बहनें जवाब देती थीं कि उन्हें बेसहारा लोगों में ख्रिस्त का चेहरा दिखता है। इस जवाब से नए सवाल खड़े हो गए। इस प्रकार विश्वास, मानव गरिमा और सुसमाचार के बारे बातचीत शुरू हुए। शुरू से ही धर्म बहनों का मिशन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की मदद करने पर केंद्रित रहा। सिस्टर बेनादित कहती हैं, वे हमसे सिर्फ रोटी के एक टुकड़े के लिए नहीं बल्कि सबसे बढ़कर एक गर्म जोशी भरे स्वागत एवं सुरक्षा की भावना की उम्मीद से आते थे। हमने बच्चों की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यशाला आयोजित किए

हमने उनकी पढ़ाई में भी मदद की। आज भी धम्म बहनें बच्चों और युवाओं की देखभाल करती हैं, उन्हें संस्कारों के लिए तैयार करती, शहर के हॉस्पिटल में बीमारों की देखभाल करती और उन्हें आध्यात्मिक साथ देना भी उनकी एक खास प्रेरिताए बन गई है। उलन उडे के कार्तिक पल्ली में करीब 100 विश्वासी हैं जो नियमित रूप से गिरजा आते हैं। उनमें से आधे बुरियात लोग हैं, उनके साथ रूसी, पोल्स और लिथुआनियाई लोगों के वंशज भी हैं। समय के साथ अलग अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत और गहरी होती गई। पल्ली के लोगों में संत दोमनी के कार्यक्रम को साझा करने और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की इच्छा हुई। इससे बोरियात में संत दोमनी का तीसरा ऑर्डर शुरू हुआ। सबसे पहले उम्मीदवार बोरियात थे, बाद में मंगोलिया की एक जवान लड़की भी उनके साथ जुड़े, उसके बाद रूसी पुरुष और औरतें भी शामिल हुए। वे अपने जीवन में डोमिनिकन आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह बुरियातिया ईश्वर द्वारा श्रेष्ठ लोगों एवं संस्कृतियों का एक विशाल एवं खूबसूरत मोजाइक है। इस भूमि पर कार्तिक समुदाय इस शानदार मिसाल का एक छोटा सा हिस्सा है। सिस्टर बेनादित कहती हैं, मेरे मिशनरी जीवन ने मुझे सिखाया कि हर एक इंसान मूल्यवान है। लोग अक्सर यह नहीं जानते कि विश्वास की ओर पहला कदम कैसे उठाया जाए, इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बोरियात संस्कृति में किसी को समय देना सम्मान का चिन्ह है। सिस्टर कहती हैं, मुझे लगता है कि यही वह साक्ष्य है जिससे हमारे छोटे कार्तिक समुदाय विश्वव्यापी कार्तिक कलीसिया के साथ साझा कर सकती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने बुरियातिया में डोमिनिकन धम्म बहनों की प्रेरिताए के बारे सुना, जिसको सिस्टर एलेना इसाकेंको SMCV ने लिखा है। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका क्या तेरा क्या मेरा। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओं, निसंदेह हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर और वातावरण उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत से माता पिताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिन भर लंबे घंटों तक काम काज करना पड़ता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अक्सर घरों से दूर रहना पड़ता है और इस तरह अपने परिवार और बच्चों की परवरिश में समय बीतते चले जाते हैं। फिर सेवानिवृत्ति का समय आता है। एक समय था जब लोग मानते थे कि रिटायरमेंट के बाद का वक्त केवल आराम का होता है, उसे घर पर रहकर बाल बच्चों पोते पोतियों के साथ समय बिताना है। परंतु मध्यम वर्गीय परिवार में कुछ लोग चाहते हैं कि जीवन के इस पड़ाव में भी व्यस्त रहें, कुछ काम करें जिससे घर में कुछ आय आए और छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने बेटे बहुओं पर आश्रित न होना पड़े। अगर रिटायरमेंट के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक है और काम करने की उनकी इच्छा है तो बेटे बहुओं को उन्हें घर पर बैठने के लिए दबाव नहीं डालनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है विजय पंडित की लिखी नाटिका क्या तेरा क्या मेरा।
1: अरे रोहिणी, रोहिणी,
2: हाँ
1: कहाँ हो तुम? अरे ये रखो मेरा ब्रीफकेस।
2: आपको इतना काम करने को किसने कहा है? अब छोड़ दो ये नौकरी ओकरी, बेटा जवान है, कमा रहा है, बहू भी कमा रही है।
1: अरे रोहिणी, तुमको क्या लगता है मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूं? घर में बैठ जाऊंगा तो घुन लग जाएगी मुझे, और अपना बोझ तो आप उठाना पड़ता है ना। काम कर रहा हूं तो बाजार में इज्जत भी है।
2: अरे बाबा, कभी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, जिंदगी भर यूं फैक्ट्री में काम करते रहे।
1: देखो रोने, काम करना मेरा जुनून है और अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, मैं तो अपने बच्चों के बारे में सोचता हूं, तुम्हारे बारे में सोचता हूं। देखो रूपेश आ गया और बहू भी आ गई है।
3: हेलो पापा, आप आ गए?
1: हाँ रूपेश, मैं आ गया। बेटा अभी चाय पीकर ही बैठा हूं, बैठो।
4: पापा, आपको एक बात कहूं मैं? आप ये नौकरी छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे देखा नहीं जाता आपको इतना काम करते।
2: ये ले बहू, ये चाय पी ले, देखा हमारी बहू कितनी समझदार है। वो भी तो यही चाहती है कि तुम आराम करो और नौकरी छोड़ दो।
1: हाँ, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पर मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात साफ बता देना चाहता हूं, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जहां माँ बाप को नौकरी छोड़ने के बाद बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है और फिर माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं रह जाती। बच्चे माँ बाप को हर चीज के लिए तरसाते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया है, मैं काम करूंगा, मरते दम तक काम करूंगा।
3: पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको और मुझ पर सोनाली पर जरा सा ही भरोसा नहीं है?
2: देखो जी, हमारे बच्चे लाखों में एक हैं, इनकी नियत पर आप शक मत करो।
3: हाँ पापा, माँ ठीक कह रही है।
4: हाँ पापा, आप कल ही रिजाइन दे दीजिए बस।
1: ठीक है मेरे बच्चों, तुम जैसा कहोगे वैसा होगा।

0: अरे ये अचानक रूपेश और बहू कैसे आ गए घर पर? अरे
1: क्या हुआ बहू को?
0: बता ना, क्या हुआ इसे?
2: अरे कुछ नहीं माँ, जरा सा चक्कर आ गया था बस। जी मचल रहा है मेरा बहुत।
0: अरे सुना तुमने? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐश्वर्या के साथ साथ लगता है मेरी बहू भी माँ बनेगी।
3: मैं अभी मिठाई लेकर आता हूं माँ।
1: अबे उल्लू, पहले ऑटो तो बुला ला, बहू को डॉक्टर के यहां ले चलते हैं।
3: हाँ चलो पापा, चलो चलो
1: चलो बेटा।

0: भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अब मेरा पोता भी बड़ा हो रहा है।
1: हाँ रोहिणी, वाकई मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं मैं, जो मुझे इतना अच्छा लड़का और बहू मिले।
0: और मेरा पोता जूनियर अभिषेक बच्चन है।
1: तुम भी रोहिणी एकदम फिल्मी हो।
0: और तुम भी तो दिलीप कुमार हो ना।
2: रुपेश, हमारा गुड्डू अब 4 साल का हो गया है। हमको उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना है अब।
3: सोनाली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आज ही बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता हूँ।
2: अरे रुपेश, कब तक लोन के सहारे बैठेंगे? ऐसा करते हैं, पापा से कहकर 1 लाख रुपए की FD तोड़वा लेते हैं।
3: अरे सोनाली, नहीं नहीं, मेरे से तो नहीं होगा ये।
2: ठीक है, मैं ही बात करती हूँ बाबूजी से।
3: ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।

0: वाह भाई वाह। अरे गुड्डू, घोड़े की सवारी कैसी लगी?
1: दादाजी, मुझे आपकी सवारी अच्छी लगती है। चल मेरे घोड़े, टिक
0: वाह,
1: टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक
0: टिक
1: टिक टिक।
0: टिक, वाह मेरे पोते, हिट हिट हिट।
1: दादाजी, इसका मतलब क्या हुआ?
0: गुड्डू, इसका मतलब तुम तरक्की करो।
1: दादाजी, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा।
2: हाँ मेरे गुड्डू, पहले इधर आ और दूध पी ले।
1: नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा।
0: अरे गुड्डू, इधर आ, भाग कर रहे हो भाई?
1: दादा दादी, मुझको पकड़ो,
2: अरे
1: मैं कहाँ
0: अरे
1: हूँ?
0: गुड्डू, इधर आओ बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो?
3: अरे पापा, आप गुड्डू के साथ खेल रहे?
2: अरे नहीं रुपेश, ये तो हम दोनों के साथ खेल रहे हैं।

0: पापा, हमें गुड्डू का एडमिशन कराना है, कुछ रुपए चाहिए थे।
1: बेटा, कितने चाहिए हमारे गुड्डू के लिए?
0: 1 लाख रुपए की जरूरत है पापा।
2: बेटा रुपेश, क्या तेरे पास पैसे नहीं है?
3: नहीं माँ, आप तो जानती हो मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, इतने पैसे जोड़ ही नहीं पाया।
1: बहू
0: जी,
1: तुम्हारे अपने पैसे भी तो होंगे, उसे खर्च कर लो।
0: नहीं बाबूजी, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं।
1: ठीक है, कल मुझसे ले लेना
0: जी।
1: लेकिन ये मेरी आखिरी अमानत है, याद रखना।
3: बाबूजी, हम भी आप ही की अमानत तो हैं।
1: ठीक है मेरे बच्चों, क्या मेरा क्या तेरा, पैसा यहीं रह जाएगा, व्यवहार बना रह जाएगा।
2: वाकई में सच ही कहा जी तुमने।
4: क्या तेरा क्या मेरा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे, विजय पंडित, अपर्णा सिंह और पूजा केलकर। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है।
1: Wer ist wohl

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत बुरियात्या में डोमिनिकन धर्म बहनों की प्रेरिताई को प्रस्तुत कर रहे हैं। बुरियात्या रूस का एक संघीय राज्य है जो दक्षिण मध्य साइबेरिया क्षेत्र में बैकाल झील के पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह साइबेरियाई एशिया का दिल एवं विविधताओं की भूमि है। 40 डिग्री की ठंडक के साथ साथ यहाँ के लोगों का स्नेह एवं मेहमान नवाजी भी खास है। जबकि बौद्ध मठ एवं सामरिक पूजा स्थल ख्रिस्त गिरजाघर से दूर नहीं है। लोगों और धर्मों के इस मेल में डोमिनिकन धर्म बहनों का समुदाय यीशु ख्रिस्त का दृश्यमान चिन्ह बन गया है और साथ ही अलग अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत में एक सक्रिय हिस्सा भी। तो लीजिए प्रस्तुत है बुरियात्या में डोमिनिकन धर्म बहनों की प्रेरिताई की एक झलक जो दिखाती है कि धर्म बहनें किस तरह कलीसिया की प्रेरिताई में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संत डोमिनिक की धर्म बहनों ने सन 2000 में बुरियात्या में अपनी प्रेरिताई की शुरुआत की। सिस्टर बर्नादेत ओपी याद करते हुए कहती हैं, हमारे मिशन की शुरुआत में हम स्थानीय लोगों के लिए इतने अजीब थे कि लोग दुकानों से बाहर निकलकर सिर्फ सड़क पर चलती धर्म बहनों को देखने आते थे। बुरियात्या जो आकार में जर्मनी के बराबर है, यहाँ 100 से अधिक जातीय समूह हैं, जिनमें सयोट्स और इवेंक्स जैसे अनोखे छोटे आदिवासी समूह भी शामिल हैं। नए मिशन के पहले कदम आसान नहीं थे। पोलैंड से आई धर्म बहनों को साइबेरिया के खराब मौसम और इस बात की आदत डालनी पड़ी कि यहाँ सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि घर में और हर जगह ठंड हो सकती है। सिस्टर बेनादित कहती हैं, मुझे साइबेरिया में अपनी पहली शरद ऋतु बहुत अच्छी तरह याद है। पूरे जनवरी माह में पाला पड़ा था और तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। शहर में गर्म करने वाली मशीन खराब हो गई थी। अपार्टमेंट में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस और +4 डिग्री सेल्सियस के बीच था। हमें अपनी जैकेट पहनकर ही घूमना पड़ता था। वहाँ के कातिक समुदाय के बारे बतलाते हुए धर्म बहन कहती हैं, बुरियात्या की राजधानी उलन उडे में कातिक समुदाय का भाग्य पहले के USSR के कई दूसरे कातिकों जैसा ही था। 1907 में स्थापित पल्ली गिरजाघर सोवियत दमन के दौरान तबाह हो गई थी। कई सालों तक विश्वासियों को खुले तौर पर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिला था। लंबे समय बाद 2003 में गणराज्य के अधिकारियों ने कैथोलिक गिरजाघर बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा दिया, जहां सिर्फ 2 साल बाद गिरजाघर बनकर तैयार हो गया। तब से गिरजाघर के ऊपर बना क्रूस इस जगह पर ख्रिस्त विश्वासियों की पुनः उपस्थिति का चिन्ह बन गया है। प्राचीन बौद्ध और शामानिक जड़ों वाले इस विविध जातियों के इलाके में ख्रिस्त की घोषणा शुरू से ही बातचीत जैसी रही है। शुरुआती जिज्ञासा ने आपस के एक जैसे मूल्यों की खोज को रास्ता दिया। अपने पड़ोसी से प्रेम करने के ख्रिस्त नियम बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के अनुरूप लगे। पारंपरिक बुरियाती संस्कृति परिवार और बुजुर्गों के साथ बहुत सम्मान से पेश आती है। शांतिपूर्ण बातचीत के माहौल में अलग अलग मान्यताएं एक दूसरे को बेहतर बनाती हैं और एक ही लक्ष्य मानव गरिमा का ख्याल रखने की ओर बढ़ती हैं। समय के साथ कुछ बुरियात परंपराएं कातिक समुदायों के जीवन में मजबूती से जुड़ गई हैं। इनमें से एक है खदाक। यह गहरा सम्मान दिखाने वाला एक खास अभिवादन है, जिसमें रेशम का स्कर्फ और घोड़ी का दूध झुककर दिया जाता है। उलन उटे के कार्तिक पल्ली और डोमिनिकन धर्म बहनों के मठवासी समुदाय में मेहमानों का स्वागत इसी तरीके से किया जाता है। खदा का रंग बहुत महत्वपूर्ण है और यह अतिथि के प्रति सम्मान का चिन्ह है। नीला रंग आसमान और पवित्रता का प्रतीक है, लाल रंग आत्मा की उष्मा का संकेत है और सफ़ेद रंग अच्छे कामों और उदारता का प्रतीक है। मिशन के शुरू से ही धर्म बहनों की प्रेरिताएँ सुसमाचार के मूल्यों के बारे में बातचीत का निमंत्रण बन गई है। जरूरतमंदों की मदद करने से लोग हैरान हो जाते थे, खासकर वे जो धर्म को नहीं मानते थे। वे पूछते थे, आप उन लोगों की मदद क्यों करती हैं जिन्हें आप जानती ही नहीं। धर्म बहनें जवाब देती थीं कि उन्हें बेसहारा लोगों में ख्रिस्त का चेहरा दिखता है। इस जवाब से नए सवाल खड़े हो गए। इस प्रकार विश्वास, मानव गरिमा और सुसमाचार के बारे बातचीत शुरू हुए। शुरू से ही धर्म बहनों का मिशन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की मदद करने पर केंद्रित रहा। सिस्टर बर्नाडेट कहती हैं, वे हमसे सिर्फ रोटी के एक टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि सबसे बढ़कर एक गर्म जोशी भरे स्वागत एवं सुरक्षा की भावना की उम्मीद से आते थे। हमने बच्चों की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यशाला आयोजित किए और हमने उनकी पढ़ाई में भी मदद की। आज भी धर्म बहनें बच्चों और युवाओं की देखभाल करती हैं, उन्हें संस्कारों के लिए तैयार करती, शहर के हॉस्पिटल में बीमारों की देखभाल करती और उन्हें आध्यात्मिक साथ देना भी उनकी एक खास प्रेरिताए बन गई है। उलन उडे के कार्तिक पल्ली में करीब 100 विश्वासी हैं जो नियमित रूप से गिरजा आते हैं। उनमें से आधे बुरियात लोग हैं, उनके साथ रूसी, पोल्स और लिथुआनियाई लोगों के वंशज भी हैं। समय के साथ अलग अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत और गहरी होती गई। पल्ली के लोगों में संत डोमिनिक के कार्यक्रम को साझा करने और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की इच्छा हुई। इससे बोरियात में संत डोमिनिक का तीसरा ऑर्डर शुरू हुआ। सबसे पहले उम्मीदवार बोरियात थे, बाद में मंगोलिया की एक जवान लड़की भी उनके साथ जुड़े, उसके बाद रूसी पुरुष और औरतें भी शामिल हुए। वे अपने जीवन में डोमिनिकन आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह बुरियातिया ईश्वर द्वारा श्रेष्ठ लोगों एवं संस्कृतियों का एक विशाल एवं खूबसूरत मोजाइक है। इस भूमि पर कार्तिक समुदाय इस शानदार मिसाल का एक छोटा सा हिस्सा है। सिस्टर बर्नाडेट कहती हैं, मेरे मिशनरी जीवन ने मुझे सिखाया कि हर एक इंसान मूल्यवान है। लोग अक्सर यह नहीं जानते कि विश्वास की ओर पहला कदम कैसे उठाया जाए, इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बोरियात संस्कृति में किसी को समय देना सम्मान का चिन्ह है। सिस्टर कहती हैं, मुझे लगता है कि यही वह साक्ष्य है जिससे हमारे छोटे कार्तिक समुदाय विश्वव्यापी कार्तिक कलीसिया के साथ साझा कर सकती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने बुरियातिया में डोमिनिकन धर्म बहनों की प्रेरिताए के बारे सुना, जिसको सिस्टर एलेना इसाकेंको SMCV ने लिखा है। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका क्या तेरा क्या मेरा। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओं, निसंदेह हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर और वातावरण उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत से माता पिताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिन भर लंबे घंटों तक काम काज करना पड़ता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अक्सर घरों से दूर रहना पड़ता है और इस तरह अपने परिवार और बच्चों की परवरिश में समय बीतते चले जाते हैं। फिर सेवानिवृत्ति का समय आता है। एक समय था जब लोग मानते थे कि रिटायरमेंट के बाद का वक्त केवल आराम का होता है, उसे घर पर रहकर बाल बच्चों पोते पोतियों के साथ समय बिताना है। परंतु मध्यम वर्गीय परिवार में कुछ लोग चाहते हैं कि जीवन के इस पड़ाव में भी व्यस्त रहें, कुछ काम करें जिससे घर में कुछ आए आए और छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने बेटे बहुओं पर आश्रित ना होना पड़े। अगर रिटायरमेंट के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक है और काम करने की उनकी इच्छा है तो बेटे बहुओं को उन्हें घर पर बैठने के लिए दबाव नहीं डालनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है विजय पंडित की लिखी नाटिका क्या तेरा क्या मेरा।
1: अरे रोहिणी, रोहिणी,
2: हाँ
1: कहाँ हो तुम? अरे ये रखो मेरा ब्रीफकेस।
2: आपको इतना काम करने को किसने कहा है? अब छोड़ दो ये नौकरी ओकरी, बेटा जवान है, कमा रहा है, बहू भी कमा रही है।
1: अरे रोहिणी, तुमको क्या लगता है मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ? घर में बैठ जाऊंगा तो घुन लग जाएगी मुझे, और अपना बोझ तो आप उठाना पड़ता है ना। काम कर रहा हूँ तो बाजार में इज्जत भी है।
2: अरे बाबा, कभी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, जिंदगी भर यूं ही फैक्ट्री में काम करते रहे।
1: देखो रोने, काम करना मेरा जुनून है और अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, मैं तो अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। देखो रूपेश आ गया और बहू भी आ गई है।
3: हेलो पापा, आप आ गए?
1: हाँ रूपेश, मैं आ गया। बेटा अभी चाय पीकर ही बैठा हूँ, बैठो।
4: पापा, आपको एक बात कहूँ मैं? आप ये नौकरी छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे देखा नहीं जाता आपको इतना काम करते।
2: ये ले बहू, ये चाय पी ले, देखा हमारी बहू कितनी समझदार है। वो भी तो यही चाहती है कि तुम आराम करो और नौकरी छोड़ दो।
1: हाँ, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पर मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात साफ बता देना चाहता हूं, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जहां माँ बाप को नौकरी छोड़ने के बाद बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है और फिर माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं रह जाती। बच्चे माँ बाप को हर चीज के लिए तरसाते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया है, मैं काम करूंगा, मरते दम तक काम करूंगा।
3: पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको और मुझ पर सोनाली पर जरा सा ही भरोसा नहीं है?
2: देखो जी, हमारे बच्चे लाखों में एक हैं, इनकी नियत पर आप शक मत करो।
3: हाँ पापा, माँ ठीक कह रही है।
4: हाँ पापा, आप कल ही रिजाइन दे दीजिए बस।
1: ठीक है मेरे बच्चों, तुम जैसा कहोगे वैसा होगा।

0: अरे ये अचानक रूपेश और बहू कैसे आ गए घर पर?
1: क्या हुआ बहू को?
0: अरे बता ना, क्या हुआ इसे?
2: अरे कुछ नहीं माँ, जरा सा चक्कर आ गया था बस। जी मचल रहा है मेरा बहुत।
0: अरे सुना तुमने? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐश्वर्या के साथ साथ लगता है मेरी बहू भी माँ बनेगी।
3: मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ माँ।
1: अबे उल्लू, पहले ऑटो तो बुला ला, बहू को डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं।
3: हाँ चलो बाबा, चलो चलो
1: चलो बेटा।

0: भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अब मेरा पोता भी बड़ा हो रहा है।
1: हाँ रोहिणी, वाकई में भगवान का शुक्रगुजार हूं मैं जो मुझे इतना अच्छा लड़का और बहू मिले।
0: और मेरा पोता जूनियर अभिषेक बच्चन
1: तुम भी रोहिणी एकदम फिल्मी हो।
0: है। और तुम भी तो दिलीप कुमार हो ना।
1: हाँ
0: रुपेश, हमारा गुड्डू अब 4 साल का हो गया है। हमको उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना है अब।
2: सोनाली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आज ही बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता हूँ।
0: अरे रुपेश, कब तक लोन के सहारे बैठेंगे? ऐसा करते हैं, पापा से कहकर 1 लाख रुपए की FD तोड़वा लेते हैं।
2: अरे सोनाली, नहीं, मेरे से तो नहीं होगा ये।
0: ठीक है, मैं ही बात करती हूँ बाबूजी से।
2: ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।

0: अरे वाह भाई वाह। अरे गुड्डू, घोड़े की सवारी कैसी लगी?
1: दादाजी, मुझे आपकी सवारी अच्छी लगती है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल
0: वाह
1: मेरे घोड़े, टिक टिक टिक।
0: वाह मेरे पोते, हिट हिट हिट।
1: दादाजी, इसका मतलब क्या हुआ?
0: गुड्डू, इसका मतलब तुम तरक्की करो।
1: दादाजी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा।
2: हाँ मेरे गुड्डू, पहले इधर आ और दूध पी ले।
1: नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा।
0: अरे गुड्डू, इधर आ, भाग कर रहे हो भाई?
1: दादा दादी, मुझको पकड़ो,
2: अरे
1: मैं
2: अरे
1: कहाँ हूँ?
0: गुड्डू, इधर आओ बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो?
3: अरे पापा, आप गुड्डू के साथ खेल रहे हैं?
2: अरे नहीं रुपेश, ये तो हम दोनों के साथ खेल रहे हैं।

0: पापा, हमें गुड्डू का एडमिशन कराना है, कुछ रुपए चाहिए थे।
1: बेटा, कितने चाहिए हमारे गुड्डू के लिए?
0: 1 लाख रुपए की जरूरत है पापा।
2: बेटा रुपेश, क्या तेरे पास पैसे नहीं है?
3: नहीं माँ, आप तो जानती हो मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, इतने पैसे जोड़ ही नहीं पाया।
1: बहू
0: जी,
1: तुम्हारे अपने पैसे भी तो होंगे, उसे खर्च कर लो।
0: नहीं बाबूजी, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं।
1: ठीक है, कल मुझसे ले लेना,
0: जी।
1: लेकिन ये मेरी आखिरी अमानत है, याद रखना।
3: बाबूजी, हम भी आप ही की अमानत तो हैं।
1: ठीक है मेरे बच्चों, क्या मेरा क्या तेरा, पैसा यहीं रह जाएगा, व्यवहार बना रह जाएगा।
2: वाकई में सच ही कहा जी तुमने।
4: क्या तेरा क्या मेरा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे, विजय पंडित, अपर्णा सिंह और पूजा केलकर। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।